नमः शिवाय श्री सरस्वत्यै महालक्ष्म्यै महाकाल्यै च नमो नमः। श्रोतेओ नमस्कार। हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरि भक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत आहे।

0: मैना कबूतर
1: नहीं बालानो छोकरा तुम जानता है बोलो कुमड़ी का पिल्लू।

दिग्दर्शक बी पी पंथालू यांचा सिनेमा होता दिल तेरा दिवाना. रोमॅन्टिक कॉमेडी. शम्मी कपूर, माला सिन्हा, मेहमूद, शैलेंद्रचं गाणं. मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने दिल से पूछो तुम.

वाह, महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़े के, शोला जो भड़े के, पहलू में बेकरार दिल।

इनकार मकन बाजा को तकदार मकन प्यार से इनकार मकन कहाँ चली देवा आदराए भरतवा कहाँ चली देवा।

अरे हम धन को लूटे, अरे वो मन को लूटे, अगर माने वो गोरी करे हम मिलके चोरी।

चांद न निकला, दस गया शब का अंधियारा, दस गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सरफ और शबनम।

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं। फूल सा रुख और शबनम शबनम पल झलक में लुक रहे हम, फूल सा रुख और शबनम शबनम।

दिग्दर्शक बी पी पंथालू यांचा सिनेमा होता दिल तेरा दिवाना, रोमॅन्टिक कॉमेडी. शम्मी कपूर, माला सिन्हा, मेहमूद, शैलेंद्रचं गाणं. मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम.

महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़े के, शोला जो भड़े के, पहलू में वे फरार दिल वे फरार।

0: बंसी बजाई, अरे कैसी बंसी अब बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे तरे रे,
1: भूल गया यार,
0: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: पर दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियां चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना

0: कपूर की नीली आंखें, देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल, संजय तार छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोसा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका, ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना।
1: कमर हेलन की, आंखें पद्मनी की, गाल विम्मी के, अदा आशा की, शोखी साधना की, बाल सिन्नी के, नूतन का कद, शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सी रहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए।